अंग 1352 है, 1352 कत्तियां रागां विचों आखरी राग प्रारंभ होया है जय जावंती। इस राग दे अंदर जय जावंती राग विच नौवें गुरदेव जिन्हां दा पिछले ही साल असी 350 साल शहीदी शताब्दी दिहाड़ा मनाया है, सिर्फ उन्हां दी बाणी है इस राग विच, होर किसी गुरु साहिबान की बाणी नहीं। जय जावंती आखिरी राग है, इहदे विच केवल नौवें पातशाह गुरदेव हिंद की चादर धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी है। इस राग जय जावंती नूं गायन करन दा जिहड़ा समां है वह रात का दूजा पहर 9 बजे तो लैके अद्धी रात 12 बजे तक का हुंदा है।

निस दिन सुन कै पुराण समझत नह रे अजान काल तो पहुचो आन कहा जह भाज रे रहाव आस थिर जो

राम भगत हिये आन, छाड़ दे तै मन को मान, नानक जन एह बखान, जग मैं बिराज रे

0: गुर प्रसाद श्लोक सहसकृति महला पहला।
1: हुण जो अमृत रूप बाणी आरंभ हो रही है उसका मंगलाचरण ते सिरलेख वो तुसां सरवण किया है। श्लोक सहसकृति सहसकृति संस्कृत भाषा दोवें

0: पाठ पुस्तक संध्या बादं सेल पूजस बगुल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गालमाला तिलक ललाटं द्वय धोती वस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निफलं तस्य जन्मस्य जावत ब्रह्म न बिंदते सागरं सागरं संसारस्य गुर प्रसादी तरह के
1: संसार पूरा बोल के फिर से
0: सागरं संसारस्य गुर प्रसाद।

0: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं त ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं त एक शब्दं जे को जान सपेयो, नानक ता को दास है सोई निरंजन देयो, एक कृष्णं त सर्व देवा देव देवा त आत्म है, आत्मं श्री वासव दिवस आत्मं श्री वासव दिवस जे कोई जान सपेव
1: वास दिवस
0: आत्मं श्री वासव दिवस
1: ये जड़ा वावा थोड़ा जा एड़े दी बार सुखम जी आनी है वास दिवस
0: आत्मं श्री वासु दिवस जे कोई जान सपेव, नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। श्लोक सहस्रकृति महा

अंत सब किछ पाइया आसा इति आसक आस पुराइय सतगुर भय दयाल ता पूरा पाइय।

0: सोहति दह दिस चमकै बीजुल मुख कौ जोहति खोजत फिरो विदेश पियो कत पाइय हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्श समाइय डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बिदातै ता तू सोहया
1: बिदातै तंदा थोड़ा जा टसके
0: बदहो पुरख बिदातै ता तू सोहया वसदी सगन अप

0: सच मानई, जिस की पूजै औद तिसै कौन राखई।
1: पूजै
2: जिस की पूजै औद, पूजै पै करण,
0: जिस की पूजै औद
2: पूजै नहीं कहना पूजै
0: बोला, जिस

0: दम क्यों होती साठ रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट।
1: सत्कार योग बाई जी ने जिक्र किया चार गुरसिखा दा, पहले गुरसिख दा नाम आ गया सम्मण, दूसरे तिना दे जिथे आउणगे फिर दर्शन करा दिते जाणगे, एक नाम उन्हां विचों सम्मण है अगे। हां जी,

0: लख घाटी ऊंचो घनो लख घाटी ऊंचो घनो
1: घाटी
0: लख घाटी ऊंचो घनो
1: ऊंचो घनो
0: लख

0: हम तज भलो सब कोय जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए।
1: नाल ना पढ़ो कृपा करके सुनो। हाँ जी,

झांख ना झंखिए तुमरो कहो ना होए कर्म करीम जो कार रहे मेट ना साके कोए।

मुकत द्वारा संकुरा राई दसें पाए मन तो मैगल होए रहे हो निकसो क्यों कह जाए कबीर ऐसा।

ऐसी होए परी, मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना, जब हाथ से दौरा लीन, कबीर रास को गांडो चूसिए।

0: है आपनो, आद माज लीज है गे लूट, कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाव,
1: मोतिया
0: कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जह खिंच तह जाओ, कबीर जपनी काठ की क्या दिखलाव है लोए, हृदय राम ना चेतही इह जपनी क्या होए, कबीर बिरहो पयंगम मन बसै मानत ना मानै कोए,
1: बिरहो पयंगम
0: कबीर बिरहो पयंगम
1: पयंगम
0: कबीर बिरहो पयंगम मन बसै मानत ना मानै कोए, राम बेयोगी ना जिया जिया ता बौरा होए, कबीर पारस चंदन है तिन है एक सुगंध, तेह मिल तेउ उतम पए लोह काठ निर्गंध, कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओहो नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहे मिलियो तिन लिया अंचल लाए, कबीर बैद कह हो ही भला दारू मेरा बस, एह तो बस्त गोपाल की जप भावे ले खास, कबीर नौबत अपनी दिन दस ले हो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यो बहुर ना मिल है आए, कबीर सात समुंद है मस करो कलम करो बन राय, बसुदा कागद जो करो हार जस लिखन ना जाए, कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूक है सर्ब जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचो लड़के मार कै रह राम लियो लाए, कबीर ऐसा को नहीं एह तन देवै फूक, अंधा लोग ना जानई रहो कबीरा कूक, कबीर सती पुकारै चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान,
1: सारे किते जिथे भगत जी दा नाम आएगा ना कबीर कबीर कबीर कबीर उपर जमकी आउणी, थोड़ा जिहा रुक के जिवें पाठ कर ही रहे आ भाई साहिब जी इसे तरह ही करना है, हर थां ते कबीर ती जमकी आउणी है, इह ख्याल रखियो।
0: कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल का खाए, कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जाको कहता और, कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओहो झूलै ओहो चीरिय ओहो झूलै ओहो चीरिय साकत संग ना।

लागै ओ घट घाट कबीर बन की दाती लाकरी ठाडी करै पुकार मत बस परो लुहार के जारै दूजी बार कबीर एक मरंत दोए मुए दोए मरंत है चार चार मरंत है छेह मुए चार मरंत है छेह मुए चार मरंत है छह मुए चार पुरख दोए नार कबीर देख देख जग ढूंढया कबीर देख देख जग ढूंढया कहूं ना पाया ठौर जिन हर का नाम ना चेतेओ कहा भुलाने और कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाह साकत संग ना कीजिए जाते होए बिना हो कबीर जग मह चेतेओ जान कै जग मह रहेओ समाए जिन हर का नाम ना चेतेओ बात है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस निरास नरक पर है ते मानई जो हर नाम उदास कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो ना मीत चाले थे हर मिलन कौ बीचे अटक्यो चीत कबीर कारण बपुरा क्या करे जो राम ना करे सहाय जेहे जेहे डाली पाग तरौ सोई मुर मुर जाय कबीर अवरह को उपदेशते मुख मैं पर है रेत रास बिरानी राखते खाया घर का खेत कबीर साधु की संगत रहो जाओ की भूसी खाओ होन हार सो होए है साकत संग ना जाओ कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत साकत कारी कांबरी तोए होए ना सेत कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए जो किछ किया सो मन किया मुंडा मुंड अजाए कबीर राम ना छोड़िया तन धन जाए ता जाओ चरण कमल चित बेदिया राम है नाम समाओ कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार कबीर माए मुंडो तेहे गुरु की।

0: प्रगट पय निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन छाट कै पाल्यो बहुत कटंब धंधा करता रह गया भाई रहया न बंद कबीर हर का सिमरन छाट कै रात जगावन जाए सरपन होए कै औतरै जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाट कै अहोई राखै नार गद ही होए कै औतरै भार सह मन चार कबीर चतुराई अत घणी हार जप हिरदय माहे सूरी ऊपर खेलना गिरै ता ठाहर नाहे कबीर सोई मुख धन है जा मुख कहिया राम देही किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते पिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाहे या सुख ते पिख्या भली या सुख ते पिख्या भली या सुख ते पिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाहे कबीर साब जग हो फिरयो मांदल कंद चढ़ाए कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए मार्ग मोती बीथरे अंधा निकसयो आए ज्योत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए बूढ़ा बंस कबीर का उपजयो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ कै घर ले आया माल कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोय पाछे पाओ न दीजिए आगे होए सो होए कबीर जग बाध्यो जेह जेवरी तेह मत बंद हो कबीर जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सह नाह अजहु जियो न छोड़ई रंकाई नै नाह कबीर नैन निहारो तुझ कौ श्रवण सुनो तो नाओ बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मोज मह रहयो अंत अर आद कबीर चरण कमल की मोज मह रहो अंत अर आद कबीर चरण कमल की मौज को
1: मौज उड़े
2: मौज
0: कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान कहबे को शोभा नहीं
1: शोभा
0: कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान कबीर देख कह कहे कहो
2: कहे कहे कहो कबीर

0: रहो हरख गुण गाय, हर जैसा तैसा उही। रहो हरख गुण गाय, कबीर चुगै चितारे पी चुगै, चुग चुग चितारे। जैसे बचरह कूंज मन, माया ममता रे। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख भरे सर ताल। चात्रिक ज्यो तरसत रह, तिन कौ कौन हवाल। कबीर चकई जो निसबीछुरै, कबीर चकई जो निसबीछुरै। आए मिले प्रभात, जो नर बिछुरे राम सियो। ना दिन मिले ना रात, कबीर रै नायर बिछोरिया। रहो रे संख मजूर, देवल देवल दाहड़ी। देस है उगवत सूर, कबीर सूता क्या कर है। जाग रोए पै दुख, कबीर सूता क्या कर है। जाग रोए पै दुख, जा का बासा गोर मह। सो क्यों सोवे सुख, कबीर सूता क्या कर है। उठ के न जप है मुरार, उठ के न जप है मुरार। कबीर सूता क्या कर है, उठ के ना जप है मुरार। एक दिन सोवन होए गो, लांबे गोड़ पसार। कबीर सूता क्या कर है, बैठा रहो अर जाग। जा के संग ते बिछुरा, ताही के संग लाग। कबीर संत की गैल ना छोटी है, मार्ग लागा जाओ। पेखत ही पुनीत होए, पेखत ही पुनीत होए।
1: पुनीत टिप्पी लागी थी,
2: पुनीत।
0: पेखत ही पुनीत होए, पेटत जपिए नाव। कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर है जाइए भाग। बासन कारो परसिए, तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ, जरा पहुंचियो आए।
1: पहुंचियो आए,
0: कबीर कबीरा राम ना चेतेओ, जरा पहुंचियो आए।
2: बिंदी भी पहुंचियो,
0: जरा पहुंचियो आए। लागी मंदर द्वार ते, अब क्या काटिया जाए। कबीर कारण सो पयो, ज्यो कीनो करतार। तिस बिन दूसर को नहीं, एकै सिरजनहार। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब। जाए पहुचह खसम कौ, जो बीज ना खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजह मोल ले, मन हठ तीरथ जाहे। देखा देखी स्वांग धर, भूले पटका खाहे। देखा देखी स्वांग धर, भूले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजै सब संसार। इस परवासे जो रहे, इस परवासे जो रहे। बूढ़े काली धार, कबीर कागद की ओबरी। मास के कर्म कपाट, पाहन बोरी पृथ्वी।

0: कह कबीरा सो परमे नाही पगलग राम रह सन्नाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारी चौकी चौ गिरद हमारे। राम नाम मन लागा जम लज्जाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करी मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहो। नानक प्रभ बनासी ताकि सेवन बिरती जासी। आनंद कर है तेरे दासा जा पूर्ण हुई आसा। बिलावल महला पंजेवा। ताती वा उन्हन लग गई पार ब्रह्म शरण आई। चो गिरद हमारे राम कार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई। राम नाम अंकुत दिया एका लिव लाई रहाओ। राख लिये ते रखन हार सब व्याध मिटाई। कौ नानक कृपा भई प्रभै सहाई। श्लोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत। ना हो ना तू न छुट है निकट न जाइयो दूत। श्लोक महला पंजेवा। मन महचित बो चित बनी उदम।

दातार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोन लेवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कहै सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव पुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बी जापे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहु तीर्थ तप दया दात दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतर गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुत्ति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जानै रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जानै सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाओ जानै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही एति सुरत न पाईया नदिया अतै वाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा से तिमाल धन कीड़ी तोलना होवनी जे तिस मन होना विसर है अंत ना सिपति कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तेस ऊंचे कौ जानै सोए जेवड आप जानै आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए क आखन पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए
आपे जाने आपे दे आखह से पे के ई के जिसनो बक्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साहु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल पुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लेव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्यान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सकह केई के जे वड भावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि स्यो कहियन केते गावन हारे गाव है तुहनो पावन पानी बह संतर गावै राजा धर्म दुआरे गाव है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इदासन बैठे देव ते आधार नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबाल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुद नो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करह बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वे जोग दोयकार चलाव है लिखे आव है भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जेव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर विखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बाव लख होहे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है
ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਾਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਉ ਖੱਲਾ ਅਗਣ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ
नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारंग नमस्तं कृतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपेय हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपरण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंद हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंब हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता
परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अचेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पूजंग पर्याति छांद अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचाल भोगे अचाल राजे अटाल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर तत्र दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विसव रच्यो स्वयं भव गण भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जाकह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग आर रेख परम वेद पुराण जाकह नेत भाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाह साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंदर बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गातमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम
आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाडय अन दंड बाडय चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ते चत्तर चक्कर परते चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने आए चत्तर चक्कर दाने आए चाचरी छांद ना सत्तराय ना मित्राय ना परमंग ना पितराय ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्रय पृथिसय अदिसय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वय प्रसाद कथते के आ छिज देसय के आ भिज भेसय के आ गंज करमय के आ भंज भरमय के आ भिज लोकय के आ दित सोकय के अवधूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीन के एक अधीन के रोजी रजाक रहीम रिहाक के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गौनय के सर्वत्र पौनय के सर्वत्र देसय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीनय के सर्वत्र लीनय के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सोखय के सर्वत्र पोखय के सर्वत्र तराणय के सर्वत्र प्राणय के सर्वत्र देसय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र पान्याय के सर्वत्र मान्याय के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वं कलीमय के परमं फहीमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुस्नुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंग आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिबरगं त्रिबादे अगंजे अगाधे सुबंग सर्ब भागे सुसर्बा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अदूत है
अनास हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बेपूते परमाथं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बेपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न ताताय न माताय न जाताय न पाताय, निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्वय प्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राज करहीम हैं, के रोजी देहांद हैं, के राज करहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुसनुल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हिरासुल फिकन हैं, कलंकं परनास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाय करहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकं परनास हैं, बेहस्तुल निवास हैं, के सर्बुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुर्रत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो बेपूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अभंग हैं, मद पार छंद त्वय प्रसाद, मुन मन परनाम गुण गण मुदाम, अर बर अगंज हर नर परपंज, अन गण परनाम मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण परनाम, जल थल मुदाम, अन छिज अंग, आसन अभंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अभंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु एक सदाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, घर घर परनाम, चित चरण नाम, अन छिज गात, आजिज ना बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन थट अपार, आडीठ धर्म, अत ठीठ कर्म, अन बरन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद, करुणालय हैं, अरकालय हैं, खल खंडन हैं, मह मंडन हैं, जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कल कारण हैं, सर्ब उबारण हैं, त्रित के धरण हैं, जग के करण हैं, मन मान्या हैं, जग जान्या हैं, सर्वं पर हैं, सर्वं कर हैं, सर्ब पास्या हैं, सर्ब नास्या हैं, करुणाकर हैं, विश्वं पर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खाल खंडस हैं, पार ते पार हैं, करुणाकर हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी त्रित हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, बेस्वंग पर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं,
सर्ब पायक है, भव भंजन है, अर गंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासे स्वतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमल रहीमे चत्तर चक्कर वर्ते चत्तर चक्कर भुगते सोयं भव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साही दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान के पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर सांग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस ना जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दाम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है बीद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत धार सब सो विचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार हिसार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री
ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੁਵੇਕ ਦੇਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ। ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦਪ ਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ। ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸਵੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰੈਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸਨ ਸਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੈਂਗੇ। ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਯੋ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਾਚ ਕਹਾਉ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕੋਉ ਬੋਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ। ਕੋਉ ਬੂਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾਤ ਸਾਹਿ ਦਸਵੀ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਾਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੱਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰੀਆ ਹੋ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਾਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਧਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀ ਅਹੋ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦੀਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਾਲਮੋ ਬਦ ਕੀਓ। ਘਾਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸ ਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਿਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ।
ता का मूड उचारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा ता का ओ कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप आपुनी बुद्ध है जेति बरनत भिन्न भिन्न तुह तेति तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरी सरिष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मै सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छै करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गोंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सतरह सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भादरव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम।

तू है जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया, भगता की चाल निराली चाला निराली। भगता हकेरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिसना बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजया। हर वासना समानी कह नानक चाल, भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे ते विचलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चलाए हे। जेव तू चलाए हे तिवै चलहै, जिन्ना मार्ग पाव हे कर कृपा जिन नाम लाए हे। से हर हर सदा त्याव हे जिसनो कथा सुनाए हे अपनी। से गुरद्वारे सुख पाव हे कह नानक सच्चे साहिब, ज्यो पावै तिवै चलाव हे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सत गुरु सुनाया। एहो तेन कै मन वस्या जिन धुर हो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली किने ना पाया। कह नानक शब्द सोहेला सत गुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया। हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो। पवित संगत सबाइया कह दे पवित, सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख, हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै। वेन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा किताय संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवहो शब्द लाग हो हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए। जिया हो मैले बहर हो निर्मल, बहर हो निर्मल जिया हो ता मैले, तिनी जन्म जुवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहु विसारिया। वेदा महनाम उत्तम सो सुन है नाही, फिर है ज्यो बेता लिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया। जिया हो निर्मल बहर हो निर्मल, बहर हो ता निर्मल जिया हो निर्मल। सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुचै नाही। मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु से ते सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई। जिया हो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए। अंतर आत्मै समाले आप छड, सदा रहै परनै गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनहु संत हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सत गुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो हो बिबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखा हो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो। गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवै हिरदै तिना समानी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिहो सारिग पानी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखानी। हर हर नित कर है रसना, कहया कछू ना जानी।
ਕਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪੈਰ ਵਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬੱਜ ਹੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੁਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ਆਪੇ, ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸੇਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਇਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ, ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਜਹੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁਤਾ, ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨਹੁ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਓਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਏਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੈ ਵਿਟਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਪੀਐ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੈ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਹੋ ਜੀਆਹੋ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਹੋ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੁਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੂਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੈ ਨਾ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਐ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ,
अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहै नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सत गुर स्यो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कहे नानक एह नेत्र अंध से सत गुर मिलिया दिब दृष्ट होई ए सरवण हो मेरे हो साचै सुनना नो पठाए साचै सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो वहो साचै सुनना नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरद्वारै लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नाव निध तेसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारै जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला साचै घर गावहो गावहो ता सोहिला घर साचै जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है जा तुद भाव है गुरमुख जिन्ना बुझाव हे एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जान पाव हे कहै नानक सच सोहिला सचै घर गाव हे अनद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते।

जिन हार राखिया उर तारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसाम दी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सचे पात साह

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगत

तू चौ सज्जन मैंडिया ढी सिस उतारो नैन महंजे तरस दे कद पसी दीदार दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीता खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीता सज्जन सच्चा पातशाहू सिर शाहां दा साहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहू जिस पास बैठिया सोहिया

प्रभु मन सहज पया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया आनंद।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदा नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हाँ जी, मत्था टेक।

सरदा सीना देख मेरा शीतल हो सरदा सीना देख मेरा साडे फटे दे चल दे निशान कानो साडे फटे दे चल दे निशान।

गुण आख वखाणा, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पैले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब है तुम का वहो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो।

है। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख्य हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जुजू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए शिव कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो।

महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत पेन पेन तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए।

तेरा सब किछ है, जैस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाईया, कह नानक सुनहो संतहो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते।

अगरि तुमरै सूत्र तारी तुम ते होए सो, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा

तंदुरुस्ती, चढ़दी कला बख्शिश करनी, ग्रीवनवाज बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना, दीर्घ आयु, गुरसिखी जीवन, उच्च विद्या दा दान, माता पिता ते वडेरियां दी शुभ आग्या पालन दी सुमत बख्शनी, कारोबारां विच वाधे करने, किरत कमाई विच बरकतां पौणियां, आप जी दे दर घर दे प्रीतवान, बीबी हरप्रीत कौर।

शांति मेरा दुख सुख तुझ ही पास सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पात सा मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पात सा सिर सा।

हो मिलहो सहेली हो सचड़ा नाम लय हां रोव है बिरहा तन का अपना साहिब संभाले हां साहिब संभाले पंथ निहाले असां पे उथे जाना।

मरण मुणसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवाणो सूरे से ही आगे आखी है, दर गह पाव है साची माणो, दर गह मान पाव है पत स्यों जाव है, आगे दुख ना लागे कर एक।

0: जगत जलंधर रख ले अपनी कृपा धार जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत आप सब संगतां वट भागे जो सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर मिल बैठ के इलाही बाणी सरवण करके अपने जीवन दी कड़ियां सफला बना रहे हो। सतगुरु कृपा करन सभना दी हाजरियां दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन दी दात गुरु चरणां नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन इतनी हाजरी दर प्रवान होइया फुलां दी खिमा बुलाओ पते आखो वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहे गुरु जी की फतेह।